0: बरकरार बिना किसी साइड इफेक्ट के।
1: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम में मौजूद फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जिल्द को बनाए मुलायम और चमकदार।
0: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
1: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।
0: क्या आप भी चाहते हैं

सरीसा जागा ले वाजी पखर राले अभी तासे जंदी नसे बिल्कुल जंदी मा मी वा सरीसा ती किसडे हो शिवे दे मडस मो डायलॉग दे होए बिल्कुल टोल खैर खैर ते ससु डेरे से तमने को बेनते हां विदा तासे चलते नसे बिल्कुल दगल तो मा खुबस प्रोग्राम छि दगल मख के रुस्ती शिवे दे

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

शुक्रिया, बिल्कुल उम्मीद लरम छ दुई बा पोशीवी दु तब जवाब मिलाव शीवी तासो संग डॉक्टर से दग तरीके तासो खदला दग शांति ओके इंशाल्लाह तासो ता मसाइल चकुम ने दाबा हल छी।

0: लाला ए लाला सिंगे प्रोग्राम सब जबरदस्त है सारा नादिया कलेवाने प्रोग्राम और वर्तवाय खपकी गये माँ मेरा मन नस्तासु चितासु मुंग द मैसेज को स्तासु डेर डेर डेर डेर डेर ज्ञात मन ना खुशाल हो से
1: हो या कुर्बान
0: यसित गनी शो अच्छा दा खदा शाइस्ता दा जमा गुलरंगी था माय राक्षा सायरा जेमल तसलाम आसमा डेरान ना आसमा पे खैर राले डेरान के हालात खैर खिरियत ते तासु खैर